हरि हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शकरता श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

भी मैं आपको दूंगी क्या क्या उनको होती हैं मुश्किलात, लेकिन समझ क्या करें, मदद करने वाले भी आ जाते हैं। और एक मदद करने वाले की उम्र क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले पंछियों से शुरू करते हैं।

0: क्या कमाल किया है लता मंगेशकर ने।
1: प्रवीण जी, पंछी बनकर ये गाना फिल्म बाबुल का है, 1950 की मूवी है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको शकील बदायूं ने लिखा है और जिसकी धुन नौशाद ने बनाई है। ये गाना नरगिस पे फिल्माया गया है और उसके साथ ये मूवी में दिलीप कुमार भी थे। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: क्या बात है, दिलीप कुमार भी थे। ते जिराख पटेल कराटीना में क्या कर रहे थे? कहते हैं कि पता है क्या, मेरा वीकेंड तो अच्छा गुजरा, आपका कैसा था? यस्टरडे आई वेंट टू द एयर स्ट्रिप जस्ट बिफोर यू गेट टू नैन्यूकी, हैड लंच देयर, देव टेस्टी पिज्जा, kids played around and saw the choppers landing and taking off. Kitna acha idea bachon ko hawai adde pe le jana, samay kitni unki knowledge badhti hai hawai jahazon ki, vimanon ki, chote bade vimanon ki. Then we headed to Nanyuki to see the mall, did some shopping at Chandaran and then back home. Theek hai Chirag Patel, good aap hamare sath share karte hain. Nitesh kehte hai, here I am from first Parklands Avenue. बहुत अच्छे अच्छा मैसेज है आपका। रुकसाना, worries and tension are like birds. We cannot stop them from flying near us, but we can certainly stop them from making a nest in our mind. कहती हैं कि ये जो है ना, ये फिकर फाके, इनको घोंसला ना बनाने दें अपने दिमाग में। सोमवार की शुभकामनाएं वंदनीय प्रवीण जी।

0: स्वागत है आपका, भरत गंगाराम ने मेरा स्वागत किया है लंदन से, बहुत शुक्रिया। और समय ओवर 20 ईयर्स जो स्वागत करते आ रहे हैं। यहाँ पर है ML विश्वकर्मा, कहते हैं लाइफ हैज टू ऑप्शंस, कहते दो विकल्प आपको जीवन देता है, स्टे स्टक इन व्हाट इट हर्ट्स, मूव टुवर्ड व्हाट हील्स, व्हाट हर्ट्स इट नहीं होना चाहिए, स्टे स्टक इन व्हाट हर्ट्स, मूव टुवर्ड्स व्हाट हील्स, यू कैन नॉट चेंज व्हाट हैपन बट यू कैन चूज व्हाट हैपन नेक्स्ट। जी बिल्कुल। और सलमा,
1: सम ब्यूटीफुल लाइंस टू पोंडर, every day is special if you think so, every moment is memorable if you feel so, everyone is unique if you see so, life is beautiful if you live so, think positive and live a happy life and celebrate life. Thank you, Salma Ahmed Kisumu.
0: बिल्कुल, अगर आप सोचते हैं तो फिर होगा। सना, बहुत शुक्रिया आपका। रंजन विनोद फ्रॉम लंदन, ग्रेट सलूट टू कैप्टन स्मिथ, ये पुरानी खबर हो गई है पर अच्छा है जी, आप सलूट करते हैं वो फ्लाई दुबई वाले इंसिडेंट में। कभी घुमंड ना करो सुबह होने तक, क्योंकि फूलों को भी नहीं पता कि सुबह मंदिर में जाना है और या अर्थी पर। लखबीर, वेरी गुड, थैंक यू, क्या बात है। और कोई पंछी है?

अच्छा पंछी अकेला है समय हमने आपको बताना है कि कौन सा अखबार आपने पढ़ना है ताकि आपको सरकारी खबरों का पूरे की पूरी जानकारी मिले अहम जरिया है द स्टार सरकारी खबरें हो आपको ताज़ा तरीन समय अपडेट्स मिलती हैं कहानियां नोटिफिकेशन सिर्फ एक अखबार में और उसका नाम है द स्टार बस कल तो ये मुफ्त होगा आज खरीद लीजिएगा बहुत डेयरिंग अखबार है जो समय विषय दूसरे अखबार उनको छूते भी नहीं है ना स्टार लेकर आता आपके सामने रखता ताकि आप आगाह रहें तो समिन कल के दिन तो हमने इतनी मुफ्त में कॉपियां बांटनी हैं पर आज जाकर कहीं नज़दीकी सुपरमार्केट से द स्टार खरीद लें

0: कितने पंछी पंछी आए हैं सुबह सुबह। सब पहले तो जैनुल मोहम्मद बहुत शुक्रिया आपका, और परवीन बट थैंक यू, आपका मैसेज बड़ा अच्छा था। भास्कर पटेल फ्रॉम मैनचेस्टर, आप सबको ग्रीट किया है सर मैंने। इसके साथ ही शाहिद चौधरी कहते हैं, सिचुएशन टाइम एंड पीपल टीच बेटर लेसन्स देन एनी बुक। बिल्कुल, सिचुएशन हालात टाइम वक्त और पीपल लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और सोनल मोदा थैंक यू, रसीला क्या कहती हैं, परवीन जी अर्चना पूरन सिंह बॉर्न 26th of September 62 इज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड टेलीविजन पर्सनैलिटी। अर्चना पूरन सिंह, शी इज नोन फॉर हर कॉमेडी रोल्स इन सेवन एज अ जज इन द कॉमेडी शो कपिल शर्मा। मुझे तो इनकी मौजूदगी, अर्चना पूरन सिंह की इन द कपिल शर्मा शो, मुझे पता नहीं बगैर बिसाइड्स लाफिंग वो और करती क्या है, एडिशन क्या है शो में। द शो कपिल शर्मा बहुत अच्छा शो है और वो बजाते खुद बड़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं, बड़े ब्राइट, लेकिन मुझे अर्चना पूरन सिंह की समझ नहीं आ रही। शी इज़ वाइडली रिमेम्बर्ड फॉर सपोर्टिंग रोल्स इन मिस ब्रगेंजा, कुछ कुछ होता है। ओके थैंक यू। और अब चलते हैं प्यार अली भाटिया के पास, वो क्या कहते हैं।
1: प्रवीण जी, दिल मेरा एक आस का पंछी, ये गाना फिल्म आस का पंछी का है और ये मूवी 1961 की है, जिसको शुभीर सेन ने गाया है और जिसको हसरत जयपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन संग जय किशन ने बनाई है। ये शुभीर सेन का गाना सुनाने के लिए।
0: और अब चलते हैं रशिया, समीर रशिया के साइबेरिया इलाके में, बहुत ठंडा इलाका है, दूर दराज है। यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ एक 28 साला लड़की लेबोरेटरी टेक्नीशियन का काम करती है। समीर, इसमें क्या खतरात होते हैं जब आप लैब टेक का काम करते हैं। इसको टूटी बोतल की वजह से समीर प्लेग हो गई, कहते हैं कि जांच जारी है लेकिन लगता यही है न्यूमोनिक प्ले।

0: और सामने आप बात करते हैं अश्विन दोषी जी अश्विन
1: आज तो पंछी की बात हो रही है।
0: इतने पंछी आए हैं, लोगों ने मुझे अपने पंछी भी दिखाए जो उनके आंगन में हैं।
1: मैंने सुना जी या अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने सुना, मुझे मैं आ गया हूँ।
0: जी जी
1: जी, गाना तो प्रवीण जी मोहम्मद रफी का आइकॉनिक गाना है।
0: ऑफ कोर्स मोहम्मद रफी साहब,
1: यस। ये फिल्म की भाभी नेम सजेस्ट प्रवीण जी, वो फैमिली स्टोरी थी।
0: अच्छा, भाभी ऑफ कोर्स इट वुड बी।
1: It was a story of an eldest brother and eldest baby, how much they sacrificed, and in the end, they get kicks.
0: Of course, that is.
1: So, his story is the story. South India, when it was ABM Studios, principal star was Balraj Sahani, and a South Indian actress was Panjri Bai.
0: पंडरी बाई, ओके। ऐसे लगता है जैसे कोई दादी का रोल करती हूँ।
1: सपोर्टिंग में थे श्यामा, ओम प्रकाश, नंदा, जगदीप सभी के, और फिल्म जी सुपरहिट हुई थी।
0: ऑफ कोर्स
1: चित्रगुप्त का म्यूजिक था और राजेंद्र कृष्ण ने सभी गीत बनाए थे। ये गाना चल उड़ गया पंछी इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी प्रवीण जी।
0: अब ये देश हुआ
1: के बोल रहे, ये गए ये गा रहे हैं कि इन द बैकग्राउंड आपने वो बड़े भाई को बोल रहे हैं कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको एंड में आपको क्या मिला, लेकिन वो बोलते हैं कि

0: Disaster Operations Center, with interventions scaled up depending on the severity and spread of the rains. A multi-agency will also conduct around-the-clock search and rescue operations in affected areas. Funding gaps and structural challenges are being blamed for Kenya's persistent teacher shortage. Director of Usawa Agenda Emmanuel Manyasa says Kenya has enough qualified teachers to hire, but inadequate funding and hiring challenges have slowed recruitment. He also says allowing MPs to influence teacher hiring has wasn't the problem. The remarks come as the world marks World Teachers Day under the theme, "The teachers we need for the education we want."
1: The reason we have shortage partly is budgetary, that we are not able to fund the hiring of the number of teachers we need. If we deploy well the resources that are in the sector, we can almost eliminate the teacher shortage.
0: That's the news update on East FM.
2: East FM News. All the favorite songs you grew up listening to. And the premier mix of today. East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: और अब आंसर दे देते हैं आपको हमारे सवाल का, जो जवाब है अभी कल्पना ने कहा है, नेक्स्ट एशियन गेम्स ये क्या थी, सुनते हैं हितेन, आपने कहा है कि There can only be one original James Bond and that's Sean Connery. बिल्कुल सही ही तेन, आपने भी देखी, हमने James Bond की तमाम फिल्में देखी, समझ उसके बाद तो ना जाने उनमें दम ही नहीं था जो भी James Bond आए.
4: परवीन जी, पंछी पर गाने लाजवाब लगे, और अभी अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो अभी अभी एशियन गेम समाप्त हुए हैं, इसलिए अगला गेम 2030 में यानी 4 साल बाद दोहा में होंगे, इसलिए उन्हें बैटन हैंडओवर कर दिया गया है.
3: बिल्कुल मंजुला विश्वकर्मा फ्रॉम पुणे, करेक्ट आंसर. और दिस मार्क्स द ऑफिशियल ट्रांजिशन एंड स्टार्ट ऑफ प्रेपरेशंस फॉर दोहा टू होस्ट द 21st एशियन गेम्स इन 2030, सोनल मोदा ने कहा है. बिल्कुल सही समीन, बैटन ये जापान की जो जापान का शहर है आइची नागोया, वहाँ से दे दिया गया दोहा को, वहाँ रखी जाएंगी अगली एशियाई गेम्स. तो ये बहुत बड़ा होता है मुकाबला. रितु गुप्ता करेक्ट आंसर. आशा भीमानी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया कि एशियन गेम्स अब 4 साल बाद दोहा में होंगी. तैयारियां उनको शुरू कर देनी पड़ती हैं समीन, बनाने पड़ते हैं स्टेडियम्स वगैरह. और ये जो एशियन गेम्स अभी ख़त्म हुई हैं समीन, भारत चौथे नंबर पे आया है मेडल्स, 85 गोल्ड मेडल्स, 85 तमगे मिले हैं, 21 सोने के, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के. क्या बात है, कहते हैं लेकिन जब हंगजू में यही मुकाबला हुआ था तो भारत के 106 थे, 106 तमगे, ओ माय गॉड, और वहाँ 85 इस साल, कमाल कर दिया है, बहुत खूब. अब देखते हैं अशोक.
5: प्रवीण जी नमस्ते, सभी सुनने को नमस्ते. ये जो प्रोग्राम आप पेश करते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बहुत, ये मैं बहुत सालों से सुनता हूँ, लेकिन आपका न्यूज़ जो है, आपका क्वेश्चन का आंसर कभी कोई जानता नहीं, लेकिन जब आप पूछते हैं तो सभी लोग ढूंढने लगते हैं और सही जवाब मिलता है. सो इट्स मेक मी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, चाओ चाओ.
3: आई एम सो ग्लैड अशोक, आपने कहा जब मैं सवाल पूछती हूँ तो आप लोग बस एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ वहाँ से ढूंढ लेते हैं आंसर. बहुत अच्छे, अगर आप मेहनत ना करें, कोशिश ना करें, तो फिर वो जवाब आपके सामने हो भी तो आपको याद नहीं रहेगा, जब आप करते हैं कोशिश तब याद रहता है. तो समझ, ये तो ख़त्म हो गई बात, अब आगे छोटी सी ट्रांसलेशन करनी है, लेकिन पहले लता

तुम ही तो मेरी पूजा हो। अब सामने कई बार आपने, अच्छा नागोया गेम्स वो जो थी एशियन गेम्स, उसके बारे कल्पना ने लिखा है कि यू नो दे ड्रू अ लॉट ऑफ फ्लैक इन द बिगिनिंग ऑफ द गेम्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। कहते हैं पहले तो बहुत निंदा हुई थी जापान की कि इन्होंने किस तरह का निज़ाम किया है एथलीट्स के लिए। आलमी मुकाबला था, एकोमोडेशन फॉर एथलीट्स वॉज नॉट प्रॉपर, दे वर पुट अप इन अ क्रूज शिप, कहते हैं बड़े बहरी जहाज में, इन कंटेनर साइज्ड रूम्स, एंड जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री, सो पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग इज इट नेसेसरी टू स्पेंड ऑन बिल्डिंग अ गेम्स विलेज इफ इट मे नॉट बी यूजफुल लेटर। ये काफ़ी सालों से हो रहा है। समझ, अगर आप कोई भी आलमी मुकाबला होस्ट करते हैं उसके लिए आपको स्टेडिया बनाने पड़ते हैं, आपको बहुत कुछ एक विलेज बनाना पड़ता है। जब वो ख़त्म हो जाता है मुकाबला, आपके करोड़ों की वो चीज़ें खड़ी रहती हैं, फिर तोड़ने लगते हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल फिर नहीं हो सकता ना। स्टेडिया जो बनाए हैं उनका फिर कितनों का इस्तेमाल होगा, तो इज़ इट वर्थ इट? और हर 6-7 महीने के बाद कोई ना कोई नया आलमी मुकाबला आ जाता है। कल्पना, यू आर सो राइट। अच्छा समय, कई बार इंग्लिश में है ये, तो आपको कोई ना कोई कहता है ठीक है एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस। बाहर बादल छाए हुए हैं, आपने छतरी नहीं उठाई, हो सकता है बारिश हो जाए, सो टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस। टेक योर वॉलेट जस्ट इन केस, खाने पे जा रहे हो, आपने पैसे तो देने नहीं है, फिर भी वॉलेट साथ ले जाओ। एटलीस्ट प्रिटेंड तो कर सकते हैं कि आप वॉलेट खोल रहे हैं, वरना आम लोग तो समझ किसी और का इंतज़ार करते हैं कि वो बिल उठा ले। एनीवे, तो आप किसी को कहते हैं टेक योर वॉलेट जस्ट इन केस, या आप कहते हैं सेव माई नंबर जस्ट इन केस, अगर आपको कोई मुसीबत हो जाए और आपने किसी की मदद मांगनी है तो मेरा नंबर लिख लें, मैं हो सकता है आपकी मदद करूं जस्ट इन केस। सम इन सब में जस्ट इन केस को क्या कहेंगे? अपने हिंदी में, उर्दू में, गुजराती में जस्ट इन केस आप मुझे बता दो, क्या हम कर सकते हैं इसको ट्रांसलेट या नहीं? 07011061061

0: अपना फेवरेट हुआ करता था ख्वातीन का, जब ये फिल्म आई है, जब ये पॉपुलर हुआ गाना, फिल्म का तो मुझे नहीं पता। और ऑन वर्ल्ड टीचर्स डे वी सेलिब्रेट टीचर्स ब्रेव कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, मेकिंग ऑफ एवरी स्टूडेंट अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड अ गुड ह्यूमन बींग। रियली आपने कहा, आई डेडिकेट द फॉलोइंग शायरी टू ऑल द टीचर्स एंड आवर वन एंड ओनली टीचर ऑन ईस्ट FM परवीन आदम। वो उस्ताद ही तो हैं जो तकदीर बदलते हैं, वो उस्ताद ही तो हैं जो तकदीर बदलते हैं, गिरते हुए इंसान को वो चलना सिखाते हैं, रहे कायम हमेशा साया उनकी शफकत का सर पर। कहते उनके प्यार का साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे, रहे कायम हमेशा साया उनकी शफकत का सर पर, वो अपने खूने दिल से गुलशने इल्म सजाते हैं। वाह वाह, ये यासर, मैं पूछती हूँ कि कब पता चलेगा कि आप कौन हैं, कोई गुप्त पर्सनैलिटी हैं? यासर, दिस इज वंडरफुल। समझ ना, आपने सुना है ना, वो उस्ताद ही तो हैं जो तकदीर बदलते हैं, गिरते हुए इंसान को वो चलना सिखाते हैं, रहे कायम हमेशा साया उनकी शफकत का सर पर, वो अपने खूने दिल से गुलशने इल्म सजाते हैं। वाह, ब्यूटिफुल, कुडंट हैव बीन बेटर ऑन दिस डे। रमेश हरिया, अच्छा आपने बहुत अच्छी ट्राई की है रमेश हरिया, जस्ट इन केस, ओके ओके, आई नेवर थॉट ऑफ दिस, ओके फाइन। जैनब, आपने कहा जस्ट इन केस, वाह वेल डन जैनब, ओके। और सोनल मोदा, आपने जो मैसेज भेजा है वो थोड़ी देर के बाद मुझे याद भी दिला देना बेशक। बीना पटेल, जी हाँ वही कहा है जो रमेश हरिया ने कहा है, ठीक। मिसेस धंजल, वो क्या कहती हैं?
1: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, मिसेस धंजल यार। प्रवीण जी, आपके सवाल का जवाब है अचानक, अचानक मीन सडनली, ओके। इसके बाद आओ अपनी कुछ लाइनें हो जाए, जे हम आजकल महात्मा बुद्ध की जो लाइनें हैं वो यूज कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हम दो गलतियां करते हैं, पहली गलती सच बोलने की शुरुआत ही नहीं करते, दूसरी गलती कभी सच बोलना शुरू करते हैं तो उसको रास्ते में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रवीण जी, ये भी महात्मा बुद्ध जी के बोल हैं, कभी कुछ भी अच्छा ना हो, कभी कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो तो आप अच्छे के लिए प्रयास करो, मीन अच्छा सोचो, क्योंकि जिंदगी का यही राइट स्टेप है। कभी हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड डे।
0: थैंक यू मिसेस धंजल। और शनाज बट इन तंजानिया, आपका पिछला ये सवाल का जवाब बिल्कुल करेक्ट था। कुलवंत, What a selection! We are so proud of you. क्योंकि इतने पंछी अचानक उड़ने लगे, कुलवंत सरोए लंदन में हैं, उन तक भी कोई पंछी पहुंच ही गया होगा। चिराग, क्या बात है, ओके ऑलराइट, मैं पढ़कर थोड़ी देर में सुनाती हूँ सबको। अल्ताफ समेजा, ओके ये अल्ताफ, ये मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक साथ आ सकते हैं अल्फाज, ओके। अब देखते हैं कि यहाँ परमिंदर चाना, हाँ वही सब ने दिया है, और वो क्या है, परमिंदर चाना ने भी दिया। चलिए मैं पढ़कर सुनाती हूँ क्योंकि इतना भी वक्त नहीं है हमारे पास। सबसे पहले रमेश हरिया ने कहा था, आपने कहा है अगर ज़रूरत पड़ी, वो है ट्रांसलेशन फॉर जस्ट इन केस। जैनब, आपने कहा खुदा ना खास्ता, अगर तो कुछ खराब होने वाला है तो आप कह सकते हैं खुदा ना खास्ता, हो सकता है कुछ खराब हो जाए, जैसे कि तूफान आने वाला है, खुदा ना खास्ता चलो ले जाओ, मतलब कि खुदा ना करे लेकिन ले जाओ अम्ब्रेला छतरी। अच्छा सोनल मोदा, आपका मैंने सुनाया है कि नहीं, मैं श्योर नहीं।
2: जस्ट इन केस ट्रांसलेट इन गुजराती, जो जरूर पड़े तो, सोनल फ्रॉम मुंबासा।
0: ओके, जो जरूरत पड़े तो, ओके बीना पटेल, जरूरत पड़े तो, ओके, मिसेस डंजल का तो हो गया, कुलवंत का भी हो गया, चिराग पटेल ने जो लिखे हैं, कहते हैं कि आप कह सकते हैं, आपने आंसर भी करेक्ट दिया, आपने कहा द सिटी इज डेजिग्नेटेड टू होस्ट द नेक्स्ट 2030 एशियन गेम्स इज दोहा, बिल्कुल करेक्ट। फिर आपने कहा बासूरत दीगर ऐसा ना हो के, ये भी हो सकता है, ऐसा ना हो के, ओके, कहीं ऐसा ना हो के चिराग पटेल, ओके, चिराग पटेल करेक्ट। अल्ताफ ने कहा था कभी ना खास, ये मतलब कि मुझे समझ नहीं आई, कभी ना खास। और जो आपने लिखा है सत श्री अकाल परमिंदर चाना किसुमू से, कहती हैं अगर आपको जरूरत पड़ी तो, जस्ट इन केस का, ओके। अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, द वर्ड माइट बी शायद, आप अगर किसी को कह रहे हैं कि छतरी ले जाओ तो आप ये तो नहीं ना कह सकते कि शायद आप छतरी ले जाएं, नहीं। फिर रशीदा इब्राहिम, एंजॉइंग द ग्रेट सिलेक्शन, शायद जरूरत पड़े, हाँ, जस्ट इन केस इज शायद जरूरत पड़े, ओके। रितु, ऑफ द ओनली करेक्ट आंसर जो मेरे साथ मिलता है, करेक्ट आंसर रितु गुप्ता, आपने भी कहा है जरूरत पड़े तो, पर जो दूसरा कहा है वो आंसर है एक्चुअल। मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ कि रितु ने कहा क्या है, ठीक है।
3: आदाब परवीन जी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जस्ट इन केस के, जो आपने सवाल पूछा है इसका अनुवाद क्या होगा, तो एग्जांपल में मैं अश्विन दोषी जी को अपना नाम देना चाहूँगा, अश्विन दोषी जी का। अब हमारा ये प्रोग्राम फिल्मी गाने का प्रोग्राम है, पुराने गाने ज़्यादा बजते हैं। अगर किसी को कोई फिल्म के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जस्ट इन केस यानी ज़रूरत पड़े तो आप अश्विन जी का कॉन्टेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया रमेश हरिया।
0: ओके रमेश हरिया, हाँ आप कह सकते हैं कि जस्ट सेव अश्विन दोषी नंबर जस्ट इन केस, मैंने एक एग्जांपल भी दी थी ना, बिल्कुल आपने सही कहा रमेश हरिया। और लखबीर, कहीं जरूरत पड़े तो, ओके, लेकिन एक और है जो किसी को मिल नहीं रहा, अभी तक मिला नहीं है सिवाय रितु
4: जी, जस्ट इन केस के लिए हम बोलेंगे शायद काम आए, शायद जरूरत पड़ जाए, या अगर जरूरत पड़े तो, जैसे टेक एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस, शायद काम आए, टेक योर वॉलेट जस्ट इन केस, शायद जरूरत पड़ जाए, सेव माई नंबर जस्ट इन केस, अगर जरूरत पड़े तो।
0: वाह बहुत अच्छे टीचर साहिबा, मंजुला हमारी हिंदी की टीचर है, आप जानते हैं ना, बहुत खूब।
5: It's 12:22. Nairobi, this Diwali, shopping, food and celebration come together under one roof. Bunny presents Diwali Bazaar from Friday 9th to Sunday 11th October at the SSDS Hall, Lower Kabete. Come discover a large variety of products and services all in one place as you shop, explore and celebrate Diwali with family and friends. Diwali Bazaar. Friday 9th, Saturday 10th and Sunday 11th October at SSD Hall, Lower Kabete. With media partners East FM and The Asian Weekly. Sponsored by Capwell Industries, Lionsight First Eye Hospital, MP Shah Hospital, Prime Bank and Checkups Medical.
6: Happy Customer Service Week with East FM.
7: Hello. This is Brenda Cherub on behalf of Rupa's Mall, Eldoret. This customer service week, we want to say thank you for choosing to shop, dine, and spend time with us. Your feedback helps us serve you better. So please, speak to our team on 0722-922-000 or reach us through our social media pages. Welcome to Rupa's Mall. Happy customer service.
5: Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs, or a segment of a program?
8: There are a number of ways you can make a complaint or comment. You can send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.

0: मेरे ख्याल से ये फिल्म अंबर है। खैर अब देखते हैं मंजुला विश्वकर्मा।
1: या फिर सेव माई नंबर जस्ट इन केस के लिए बोल सकते हैं कि शायद काम आए, मेरा नंबर सेव कर लो, शायद काम आए।
0: शायद काम आए, ओके। अच्छा अब देखते हैं कि या जयश्री, थैंक यू। अब चिराग पटेल, शायद जरूरत पड़े, ओके। लेकिन चिराग, देर इज वन वर्ड, मुझे नहीं पता आपको मिला नहीं, एक वर्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है, कोशिश करें। लखबीर, इतिहाद के लिए। अच्छा वाह, ये सेकंड कॉलर हैं जिन्होंने जरा गलती की स्पेलिंग में, लेकिन करेक्ट। और उमर, वेल डन, ब्रिलियंट उमर फ्रॉम दुबई, करेक्ट आंसर। अमीर अली राणा, आपने इंग्लिश में कहा है ना, हमें हिंदी में चाहिए। सोनल मोदा, नहीं, अगर ऐसा हो तो नो। ये हैं आशा भिमानी, वाह वाह ब्यूटीफुल। आशा भिमानी इज राइट, लखबीर इज राइट, एंड रितु गुप्ता इज राइट। समझ, वो जो लफ्ज था ना, वो है एहतियातन, एहतियात, यू नो, आप एहतियात करें, आपको पता है उर्दू का मतलब क्या है, टेक, आई मीन मेक श्योर कि कुछ गलत ना, एहतियात करें, तो एहतियातन छतरी ले जाएं, एहतियातन टोकरी ले जाएं, एहतियातन कोट ले जाएं। सो यू सी, एहतियातन है ये। क्या बात है। और जी हाँ, सोनल, वो पहले ही कह दिया हमने शुरू में ही प्रोग्राम के।

चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश।